0: तय करने पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी है। कुवैती वजारत खारजा ने पीर के रोज़ जारी करदा बयान में कहा कि रात गए होने वाली एक टेलीफोनिक मुलाकात में कुवैत के वजीर खारजा जर्राह जाबिर अल अहमद अल सबाह ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब हकदार को हाल ही में तय पाने वाले मक्का मुश्तरक दिफाई माहदे की मुबारकबाद पेश की है। जमहूरियत तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जुमे के रोज़ मक्का मुकर्रमा में मजकूरा माहदे पर दस्तखत किए थे। इस माहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक के खिलाफ मुसल्लह हमले को तीनों ममालिक के खिलाफ हमला तसव्वुर किया जाएगा। माहदे के मकासद में इज्तिमाई दिफाई सलाहियतों मज़ाहमती क़ुव्वत को मजबूत बनाना और दिफाई तआवुन को मजीद वसअत देना भी शामिल है। यह माहदा रियाज, अंकरा और इस्लामाबाद के दरमियान दिफाई तआवुन को मजबूत बनाने, मुश्तरक तजवीराती मफादात के तहत मुश्तरक सलामती के चैलेंजों से निमटने और बाहमी रद्द अमल को मरबूत करने की गर्ज़ से कई बरसों से जारी मुशावरत के बाद सामने आया है। यह पेशरफ ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़े के बाद आबनाए हुरमुज में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान सामने आई है, बावजूद ये कि समंदरी आमद रफ्त की आज़ादी बरकरार रखने के लिए सफारती कोशिशें जारी हैं। इस कशीदगी ने आलमी तवानाई की रसद और बहरी सलामती से मुतालिका खदशात में इजाफा कर दिया है। दोनों वज़रा खारजा ने मकबूजा मशरक़ी अल-क़ुद्स समेत इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया है। इस हकदार और जर्राह ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और जर्राह के हालिया दौरे पाकिस्तान के बाद होने वाली पेशरफ समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की। इलावाजी अहम शोबों में तआवुन और सरमायाकारी को मजबूत बनाने के तरीकों का भी जायजा लिया गया है।
1: बांग्लादेश की वजारत समंदर पार रोजगार और बहबूद तारकीन वतन ने इतवार के रोज सऊदी अरब के दारकूमत रियाज में एक सोफा फैक्ट्री में लगने वाली आग के नतीजे में कम अज कम 16 बांग्लादेशी तारकीन वतन मजदूरों की हलाकत का ऐलान किया है। वजारत ने इस मालूम की तस्दीक सऊदी अरब के महकमा फायर ब्रिगेड के हवाले से की है। वजीर आरफ उल हक चौधरी ने इन कीमती जानों के जिया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि सऊदी अरब में रोजी कमाने के लिए मेहनत करने वाले इन तारकीन वतन की इस तरह की बेवक्त और अलमनाक अमवात इंतहाई दिल दहला देने वाली हैं। मुल्क की मईशत में इनका तआवुन बहुत बड़ा है। वजीर ने बताया कि सऊदी अरब में बांग्लादेशी सफारतखाना जाए हादसा पर मौजूद है और मुकामी हुकाम के साथ 24 घंटे राब्ते में है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी है कि वह हलाक होने वाले तारकीन वतन की मैयतों की वतन वापसी के अमल को तेज करें और इनके खानदानों को तमाम जरूरी सरकारी इमदाद और मुआवजे की फराहमी यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब बांग्लादेश वजारत खारजा ने भी कहा है कि सूरत हाल की कड़ी निगरानी की जा रही है और हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। सऊदी अरब बांग्लादेश तारकीन वतन मजदूरों के लिए सबसे अहम तरीन मंजिल बना हुआ है, जहां तकरीबन 35 लाख बांग्लादेशी शहरी मुकीम हैं और काम कर रहे हैं। कम महारत वाले कामों में मसरूफ इन बांग्लादेशी तारकीन वतन मजदूरों ने गुज़श्ता साल अपने मुल्क को 2.7 अरब डॉलर से ज़ायद ज़र मुबादला भेजा है।
0: ईरानी वजीर खारजा अब्बास सराग़ची ने कहा है कि वह फ़िलवक्त अमरीका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकराती अमल में मसरूफ़ नहीं हैं और जब तक वाशिंगटन इंतज़ामिया मुतफ़िका माहदे की खिलाफ वर्जियों का इजाला नहीं करती, मुज़ाकरात दोबारा शुरू नहीं होंगे। ईरान के सरकारी टेलीविज़न से बात करते हुए इराग़ची ने अमरीका के साथ राबतों और अबनाए हुरमुज़ के हवाले से बयान दिया। फरीकान के दरमियान सालिसों के जरिए पैगाम के तबादले के जारी रहने की तरफ इशारा करते हुए इराग़ची ने कहा कि इस वक्त हम अमरीका के साथ किसी बातचीत में नहीं हैं, सालिसों के जरिए पैगाम का तबादला हो रहा है, मगर इसे मुज़ाकरात कहना दुरुस्त नहीं। इराग़ची ने कहा कि सालिस दोबारा बाहमी समझ बूझ की बुनियाद कायम करने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं और मुज़ाकरात के दोबारा शुरू होने के लिए अमरीका को मुतफ़िक़ा माहदे की खिलाफ वर्जियों के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। अब्बास अराग़ची ने मजीद कहा कि जब तक मफाहमत याददाश्त की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म नहीं होती और अमरीका ने मुतफ़िक़ा माहदों की खिलाफ वर्जियों का इजाला नहीं किया, मुज़ाकरात के दोबारा शुरू होने का कोई इम्कान मौजूद नहीं है।
1: गजा अमन कमेटी के नुमाइंदे निकोलाई मिलादिनोफ ने कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू की जानब से मुस्तरद किए जाने के बावजूद अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा मनसूबा वाहिद हल है। उन्होंने मजीद कहा है कि बातचीत जारी है और वो मुस्बत नतज की उम्मीद रखते हैं। इस मनसूबे में हमास को अपने हथियार फलस्तीनी इंतजामिया के हवाले करने और इसराइल के गजा से इनखला के आगाज का मनसूबा पेश किया गया है।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इसराइली वजारत खारजा की तरफ से जनूबी लुबनान के बड़े हिस्से को इसराइली इलाके के तौर पर दिखाए जाने के बाद हिजबुल्ला ने हुकूमत लुबनान से मुतालबा किया है कि वह इसराइल के साथ बराह रास्त मुजाकरात रोक दे। हिजबुल्ला का कहना था कि नक्शे ने लुबनानी सरजमीन और वसायल